0: मेरी उम्र 12 साल है। घर में मेरे 4 भाई हैं, एक बहन है और मेरे मम्मी पापा। बाहर जाके वहाँ चूहे मार बेचते हैं, थोड़े पैसे आते हैं। मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं बेचना चालू कर देती हूँ।
1: मेरा लड़का है, मैं उनको काम के लिए भेजती हूँ लेकिन मुझे बुरा लगता है इसलिए रोक भी नहीं सकती उनको और भेजना भी पड़ता है क्योंकि घर में परेशानी ज़्यादा है।
0: सुबह उठता हूँ, कभी कभी खाना नहीं मिलता तो ऐसे ही पढ़ने बैठ के नहा धोकर स्कूल चले जाता हूँ, स्कूल में खाना मिल जाता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है।